ष्टेयाता तवाचोतासोवाने हके विनष्टेयाता न एङ्यताशोवाने आ याय आ याय हा ए मंग मंग कोतोरित अम नामे पोषे नोनोवा ओया मंग मंग कोतोरित अम नामे पोषे नोनोवा ओया शेक्यां